0: क्या बात है, बड़ा शानदार सुन के बड़ा वधिया लग्गिया। ते वाह गुरु वाह जी वाह, क्या बात है। प्रोग्राम सरब रेडियो ते नाल दी नाल शनिवार दा टाइम है, शनिवार दी शाम ते होवे कुछ खाण वाला शानदार खाना। ते असी हमेशा अक्सर ही रेकमेंड करते हैं, हाईली रेकमेंड करते हैं तंदूरी बॉयज़ ते। तुसी जरूर चक्कर ला के आओ जे हजे तक नहीं गए। शानदार स्वाद वाला खाना तुहानू मिलता है, भावें तंदूरी मोमोज होण, मलाई चाप, ते बहुत शानदार फूड तुहानू मिलता उत्थे। ते चार लोकेशनस तो तुहानू हुण सर्व कर रहे ने तंदूरी बॉयज ढाबा भी। शेलबर्न तो ऑरेंजविल जाते हुए नॉर्थ वाले पासे आ रहे हो, जा रहे हो, तो जरूर ढाबे का एक्सपीरियंस लियो, तो नाले शानदार खाना भी तुसी जरूर खाया जाए। तंदूरी बॉयज 24 घंटे खुले ने 7171 टोरब्रम रोड से, जा तुसी जड़ा हैगा अपना क्वीन एंड मैकलोगलन इंटरसैक्शन, उत्थे भी टेकआउट एंड डिलीवरीज ले सकते हो। तो जा फिर नवी लोकेशन डेरी रोड से भी खुली है मिसिसागा दे विच, चार लोकेशन तंदूरी बॉयज ढाबा। नंबर संपर्क करन दे लई 905-956-2111 तंदूरी बॉयज। चलते हैं जी कॉल दे वाल जी। कुलदीप जी सत श्री अकाल।
1: हफ्ते
0: बाद फिर चले
1: अगले। हां जी हां जी,
0: नजारे तुहाडे ही है। क्या बात है, तुहाडा आंदा हुंदा मैसेज मैनू पता है, तुसी इंडिया तो भी प्रोग्राम सुनदे हो, मैसेज करदे हुंदे हो। क्या बात है, क्या बात है,
1: गाना बड़ा वधिया लग्या तुसी लाया ना जिला जी, क्या बात है, बहुत ज्यादा
0: सुन के बड़ा वधिया लगदा। बंदा हर चीज धन्नवाद करदा ना भी, ये पत्ते भी तेरे, हर चीज तेरी है भी, वाह रब तुसी, वाह गुरु क्या बात है।
1: पर ये भी समझते नहीं ना, मतलब साडी अपनी जिहड़ी हर कोई मम्मी विच ही है जी।
0: हां जी, वाह कोशिश ही है जी, साडे वल्लों भी कोशिश जा रही है साडी।
1: बड़ा वधिया मैसेज जी, बहुत वधिया मैसेज। चलो करो टॉपिक शुरू फिर करदे जी।
0: क्या बात है, बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, बहुत धन्नवाद सर, थैंक यू, थैंक यू जी। 5650-5630-5630 सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल जी,
0: की हाल चाल है जी?
2: वधिया जी।
0: जी जी जी,
2: हां जी, मैं भी जिदा एक स्किट जिदा इन सुनाई भाई खाली।
0: हां जी
2: हां जी, वो भी एक बंदा

0: तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
1: लो जी, तुम्हारी फेर अपना टेस्ट करने लगे हैं, दिल कर रहे हैं ताजी का सिप करने लगे हैं, जरा सुन के सोने हो।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि। भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

पौ पातु दिशां पतिः पादौ पातु दिलमणि पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्य कवचं पुण्यम् अभेद्य वज्र सन्निभम् सर्वरोग भयाद्

क्रिया ब्रह्मणि पुरा ब्रह्मणा कथितं पूर्वं कर्माय जानवी तदी धर्मेण दत्तं मह्यं च कृपया पुष्करी पुरा त्रिपुरारिश्चय कृत्वा जगान त्रिपुरं पुरा मनोज ब्रह्माय कृत्वा मधुकैटभयोर्भया सञ्जहार।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत प्यारा स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी श्रोताओं का वीकेंड उम्मीद रखती हूँ कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अब आपके लिए अक्टूबर 2 का दिन भी बड़ा महत्व रखता है, गांधी जयंती मनाई जाती है और आपने भी कहीं ना कहीं जरूर उनको याद किया होगा। तो हमारे नेशनल राष्ट्रपिता हैं तो जरूर उनको याद किया जाता है। तो उनको और अब आपके लिए अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का टीवी चाहिए, बैक यार्ड में बढ़िया बढ़िया आपको गैजेट चाहिए, बैक यार्ड में आपको बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो ये सारा सामान फेस्टिव सीजन के लिए गिफ्ट देने के लिए आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनके बारे में जानकारी ले लो स्पेशल्स के बारे में, तो फिर अपना घर से जा लो फेस्टिव सीजन के लिए। तो उनको कॉल कर लो, ऑर्डर बुक कर लो 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। हिमालतर वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਵੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3340, ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3340, BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ आपके लिए बड़ी सुंदर सी मूवी आई थी ओल्ड इज गोल्ड कलेक्शन में से, ससुराल। तो सभी लोग इंडिया जहाँ भी जाते हैं ससुराल तो सभी जगह होता है, सभी जहाँ भी दुनिया में रहते हैं सभी कल्चर्स में होता है ससुराल जाना। तो आपको ससुराल फिल्म का मैं बहुत ही प्यारा सुना, पहले बाजू की अगर आपने मूव तो HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मदद करते हैं। तो ये जो है जो HK मूवर्स आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-8004-416-524-6704। तो आइए सुनिए गाना।

का स्वागत है घर संसार में। तो हालांकि ये जो फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट का जो था उस वक्त, तो लेकिन आप देख सकते हो सीनरी में कि कोरियोग्राफी कितनी बढ़िया की गई है, कमाल की कोरियोग्राफी की गई है इसमें। तो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, बहुत सुंदर फिल्म है, पुराने सभी एक्टर्स हैं इसमें, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो अब और भी गाने आपको सुनाएंगे, तो पहले आपके लिए सुनाएंगे बहुत ही प्यारा सा गीत। पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज जो बढ़िया लेके आना है फेस्टिव सीजन के लिए, नया टीवी लेके आना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल लगी हुई है। तो ये है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स। उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो गोल्फ वालों के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है। आप उनकी स्पेशल देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com। छोटी सी किचनेट आपको सेट करवानी है तो वो भी करवा सकते हो। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए। उनका नंबर है 905-799-0045। अपने ऑर्डर पहले से बुक कर लीजिए फेस्टिव सीजन के लिए। तो अब उनकी स्पेशल्स देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो तो आपके लिए बड़ी ही खुशी वाली खबर है कि आपके लिए मास्टर खुलते हैं। आपने कुल्फी कुल्लीजन का काम करवाना हो तो आप वहां पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। जी हाँ, उनको टॉप फाइव मास्टर कुल्लीजन डिपो .com पर जाकर आप उनके बारे में और उनके बारे में आप ले सकते हो। तो अब किस किस्म की भी आपको मूविंग करनी तो आपके लिए एच मूवर्स घर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, गाड़ियां भी मूव करने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 400-524-4164-1652-4670 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। मूविंग कोई आसान काम नहीं होता, पर एच के मूवर्स आपके लिए हर तरह की आसानी कर देते हैं मूविंग में। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो, सराहते हो, मैसेज भेजते हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रोग्राम 25 साल से ऐसे ही चल रहा है, तो आप सभी की वजह से और स्पॉन्सर्स की वजह से ही हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। तो अब अगर आपके लिए इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने जा रहे हैं, तो थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के इलाके में साद महमूद आगे आए हैं। वो बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को मदद करते आ रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो काउंसलर की रेस में है। तो आप अपना आपका हक है तो जरूर, हम ये नहीं कहते किसी को भी आप वोट दो, किसी को भी आप वोट दे सकते हो, लेकिन आपका हक है तो इसको जरूर आप, ये जो इलेक्शन है इसमें काफी चीज आपको चुननी होगी। मेयर चुनना होगा, आपको काउंसलर चुनने होंगे, स्कूल ट्रस्टी चुनने होंगे, तो ये सारी जानकारियां भी डिबेट होंगे, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए अपने अपने इलाके में। हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तां अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकली फाटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 डॉलर तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड़ है तो वो भी मिलेंगे। चार टायर का सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत। तां फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हमिल्टन।
कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो मिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत। और जब आजकल मौसम बहुत अच्छा है।

0: एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये फिल्म आई थी 1963 में सेहरा, तो उसमें संध्या एक एक्ट्रेस थी, उसी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, लता जी का गाया हुआ गीत। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए, अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना लेना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे जाइए। करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ चाहिए, क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमने जो गाने चुने हैं, तो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी किस्म का भी पूजा का सामान लेना है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे पूजा के लिए। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और पितर पक्ष के लिए भी पूजा के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट पे आपको सब मिलता है, तो वहाँ आप जाइए और वहाँ से आप ले सकते हो।
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेज, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल, जिकोजी एंड विलियम्स पार्क वे मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में, ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज, जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-456-5730 पर कॉल कीजिए, 905-456-2733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि आपने अगर लंदन में के आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने क्लीजन का काम करवाना है, तो आप masterclusiondepot.com पर जाइए, उनके बारे में जानकारी लेकर के तो आप वहाँ पे आपको पूरी आपकी कार वेंट आपको एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत, फिल्म थी आसपास, हेमा मालिनी।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, गाने पसंद आएंगे। तो एक फिल्म बड़ी बढ़िया आई थी, विदेश की फिल्म, तो हेमा मालिनी थी उसमें, लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, क्योंकि अगले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड है आप सभी का, तो थैंक्स गिविंग का। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाने सुहागा भला, हैव ए वंडरफुल डे, वंडरफुल वीक, एंजॉय द सॉन्ग, रजेश खन्ना और आशा पारेख।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए

मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि। भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती है। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट, और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली, कलश, कोकोनट, मैंगो लीव्स, केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप, इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 41 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.

समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 हर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशन तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1165 ते 016-213-1165

श्री विचित्र वीर हनुमान मारामन्नः श्री गणेशाय नमः ओम अस्य श्री विचित्र वीर हनुमान मारामन्त्रस्य श्री रामचंद्रो भगवान ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री विचित्र वीर हनुमान देवता ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे मारामन्त्र जपे वीरः अथ करन्यासः ओम राम अमुष्टाभ्याम नमः ओम रीं तर्जनीभ्याम नमः ओम रूं मध्यमा

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत प्यारा स्वागत है। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी श्रोताओं का वीकेंड उम्मीद रखती हूँ कि बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो अब आपके लिए अक्टूबर 2 का दिन भी बड़ा महत्व रखता है, गांधी जयंती मनाई जाती है और आपने भी कहीं ना कहीं जरूर उनको याद किया होगा। तो हमारे नेशनल राष्ट्रपिता हैं तो जरूर उनको याद किया जाता है। तो उनको और अब आपके लिए, अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर लेके आना चाहते हो, बढ़िया क्वालिटी का टीवी चाहिए, बैक यार्ड में बढ़िया बढ़िया आपको गैजेट चाहिए, बैक यार्ड में आपको बढ़िया बढ़िया फर्नीचर चाहिए, किचन की गैजेट्स लेटेस्ट चाहिए, तो ये सारा सामान फेस्टिव सीजन के लिए गिफ्ट देने के लिए आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनके बारे में जानकारी ले लो, स्पेशल्स के बारे में, तो फिर अपना घर से जा लो फेस्टिव सीजन के लिए। तो उनको कॉल कर लो, ऑर्डर बुक कर लो 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। हिमालतर वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो आज ही पहुंचो बीबीटी रॉकलेफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके 1,00,000 तक। ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तों शुरू अते हर तरहां दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM530 ਲਿਸਨਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਵੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3340। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ 365-384-3340। BBT ਰੌਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਘਰ ਸੰਸਾਰ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ आपके लिए बड़ी सुंदर सी मूवी आई थी ओल्ड इज गोल्ड कलेक्शन में से, ससुराल। तो सभी लोग जहाँ इंडिया जहाँ भी जाते हैं, ससुराल तो सभी जगह होता है, सभी जहाँ भी दुनिया में रहते हैं सभी कल्चर्स में होता है ससुराल जाना। तो आपको ससुराल फिल्म का मैं बहुत ही प्यारा सुना। पहले बाजू की अगर आपने वो तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मदद करते हैं। तो ये जो है जो एचके मूवर्स आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो 416-524-804-1652-46704। तो आज के लिए

का स्वागत है घर संसार में। तो हालांकि ये जो फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट का जो था उस वक्त, तो लेकिन आप देख सकते हो सीनरी में कि कोरियोग्राफी कितनी बढ़िया की गई है, कमाल की कोरियोग्राफी की गई है इसमें। तो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, बहुत सुंदर फिल्म है, पुराने सभी एक्टर्स हैं इसमें, तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। तो अब और भी गाने आपको सुनाएंगे, तो पहले आपके लिए सुनाएंगे बहुत ही प्यारा सा गीत। पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज सेट बढ़िया लेके आना है फेस्टिव सीजन के लिए, नया टीवी लेके आना है, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया स्पेशल लगी हुई है। तो ये है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स। उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो गोल्फ वालों के लिए भी बड़ी खुशी की खबर है, आप उनकी स्पेशल्स देखिए topchoiceelectronics.com। छोटी सी किचनेट आपको सेट करवानी है तो वो भी करवा सकते हो, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कीजिए। उनका नंबर है 905-799-0045। अपने ऑर्डर पहले से बुक कर लीजिए फेस्टिव सीजन के लिए। तो अब उनकी स्पेशल्स देखने के लिए topchoiceelectronics.com पर जाइए। अगर आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हो तो आपके लिए बड़ी ही खुशी वाली खबर है कि आपके लिए मास्टर खुलके हैं। आपने कोई भी कोलिजन का काम करवाना हो तो आप वहां पे जाइए और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। जी हाँ, उनको topmasterkollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और उनके बारे में आप ले सकते हो। तो अब किस किस्म की भी आपको मूविंग करनी तो आपके लिए एच मूवर्स कहने घर में मूव होने में आपकी मदद करते हैं, गाड़ियां भी मूव करने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको कॉल कर लो 400-524-4164-6704 पे आप एच के मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। मूविंग कोई आसान काम नहीं होता, पर एच के मूवर्स आपके लिए हर तरह की आसानी कर देते हैं मूविंग में। तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हो, सराहते हो, मैसेज भेजते हो, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारा प्रोग्राम 25 साल से ऐसे ही चल रहा है, तो आप सभी की वजह से और स्पॉन्सर्स की वजह से ही हमारा प्रोग्राम आप तक पहुँच रहा है। तो अब अगर आपके लिए इलेक्शन अक्टूबर 26 को होने जा रहे हैं, तो थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के इलाके में साद महमूद आगे आए हैं। वो बहुत सालों से अपनी कम्युनिटी को मदद करते आ रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी में, और तो काउंसलर की रेस में है। तो आप अपना आपका हक है तो जरूर, हम ये नहीं कहते किसी को भी आप वोट दो, किसी को भी आप वोट दे सकते हो, लेकिन आपका हक है तो इसको जरूर आप, ये जो इलेक्शन है इसमें काफी चीज आपको चुननी होगी, मेयर चुनना होगा, आपको काउंसलर चुनने होंगे, स्कूल ट्रस्टी चुनने होंगे, तो ये सारी जानकारियां भी डिबेट होंगे, तो आपको ये सारा पता होना चाहिए अपने अपने इलाके में। हमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो BBT रॉकलिफ ऑटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इथे ही हमिल्टन विच। ताडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन सिर्फ 5,000 तो लेके 1,00,000 तक। फाइनेंस की चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, हर तरह के क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हैं। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवे टायर दी लोड है तो वो भी मिलणगे, चार टायर का सेट सिर्फ 299 तो शुरू। हुण सुनो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जदों तुसी BBT रॉकलिफ ऑटो हमिल्टन आओ सानू सिर्फ ए दसो, मैं AM530 ते मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तो फिर देर किस गल दी, अज ही विजिट करो BBT रॉकलिफ ऑटो हमिल्टन,
कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो मिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो लीजिए सुनिए ये प्यारा सा गीत। और जब आजकल मौसम बहुत अच्छा है।

0: बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये फिल्म आई थी 1963 में सेहरा, तो उसमें संध्या एक एक्ट्रेस थी, उसी के ऊपर ये गाना फिल्माया गया था, लता जी का गाया हुआ गीत। तो मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार। तो आइए, अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको खाना लेना है, आपको लाइव कुकिंग करवानी है दिवाली के लिए या किसी भी मौके के लिए, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे जाइए। करवा चौथ के लिए मिठाइयाँ चाहिए, क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे हमने जो गाने चुने हैं, तो आपको एक प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। पहले आपको बता दूँ कि अगर आपने किसी किस्म का भी पूजा का सामान लेना है, अभी नवरात्रे आने वाले हैं ना, तो आप भी तैयारी कर रहे होंगे कि पूजा के लिए अभी अभी श्राद्ध चल रहे हैं, और पितर पक्ष के लिए भी पूजा के लिए अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई सामान चाहिए, तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट पे आपको सब मिलता है, तो वहाँ आप जाइए और वहाँ से आप ले सकते हो।
1: गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आँखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5730 पर कॉल कीजिए 905-456-2733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आपके लिए एक और प्यारा सा गीत सुनाते हैं। पहले आपको बता दें कि आपने अगर लंदन में के आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने क्लीजन का काम करवाना है, तो आप masterclusiondepot.com पर जाइए, उनके बारे में जानकारी लेकर के तो आप वहाँ पे आपको पूरी आपकी कारवेंट आपको एकदम नए जैसा बना देते हैं। तो लीजिए सुनिए ये गीत, फिल्म थी आसपास, हेमा मालिनी।

जी हाँ, तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आएगा, गाने पसंद आएंगे। तो एक फिल्म बड़ी बढ़िया आई थी, विदेश की फिल्म, तो हेमा मालिनी थी उसमें, लता जी का गाया हुआ यह गीत है। तो बहुत ही प्यारा सा गाना है, बड़ा फेस्टिव सा गाना है, क्योंकि अगले हफ्ते लॉन्ग वीकेंड है आप सभी का, तो थैंक्सगिविंग का। तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सुहागा भला, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल वीक, एंजॉय द सॉन्ग, राजेश खन्ना और आशा पारेख।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

गोविंद कृपा तारे, प्रभ राखे पैज हमारे। सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा। गोविंद कृपा तारे, प्रभ राखे पैज हमारे। हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावे, बिरथी आस न जाई। कृपा करे जिस प्राण पत दाता, सोई संत गुण गा

आठ पहर हर का जस रवना दिखठ गौरी लाथी सांग में लाए लिया मेरा करता संत साध पै साथी कारगहलीन सर्वस दीन आप है आप मिला।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये राजधानी राजधानी राजधानी
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiyan nikiyan kishtan. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100. कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862 G Media Group।

0: 5 से 8 तक मनाओ दिवाली ब्रार्स के साथ। हैप्पी दिवाली।
1: मैं हरसिमरन सिंह, साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है, पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीआं ने। पुलिस, पैरामेडिक्स, रीजनल रोड्स, पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है। वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर। आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज, वोट हरसिमरन सिंह।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह।
3: मैं बलजिंदर सिंह नहल, अपने ब्रैम्पटन ने सब कुछ देखा है, सड़कां तो पार्कां तक, ट्रैफिक तो सिटी सेवावां तक, क्राइम तो करप्शन तक। चंगा शहर सिर्फ वादियां नाल नहीं काम नाल बनता है। तुहाडे मुद्दे सिर्फ चोणां तक नहीं सिटी हाल तक लेके जाना मेरी जिम्मेवारी है। वोट फॉर चेंज, वोट फॉर बलजिंदर सिंह नहल, सिटी काउंसलर कैंडिडेट, वार्ड 9 और 10।
2: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ बलजिंदर सिंह नहल।
4: Welcome to Glitz by Gill's Banquet Hall, a beautiful space with modern design, state-of-the-art sound, state-of-the-art lighting, and wait till you see mouth-watering delicious food. Whether it's an engagement party, a wedding, a birthday party, or corporate event, Glitz by Gill's Banquet Hall has exactly what you need. Moments become a memory, memories become treasures. Call 905-724-7100, 2131 Williams Parkway, Glitz by Gill's Banquet Hall.
5: ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਅੱਡਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416-747-6800। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਕ ਐਂਡ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਜਨ ਟਿਊਨਅਪ, ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਿਊਨਅਪ, ਯੈਲੋ ਸਟਿੱਕਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਊ ਵੈਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ, ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ, ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ 21 ਮੈਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵ, ਨੌਰਥ ਯਾਰਕ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੱਡਾ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ 416-747-6800, 416-747-6800, ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਡ ਕਾਰ ਸੇਲਸ।

0: CHLO AM 530.
1: इको इकना कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल बुकिंग ले आज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रेवल
2: 32 55 80 98 81
3: गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
2: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
4: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलेंगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
3: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 9054502828 905-450-2828
0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton.

0: Kitchen, address 6685 Thomkin Road, Mississauga. Number 6472620000 and home for kitchen.
1: Jeda bed fire niche da launa balliye.
2: ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो। ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी, तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। आहो जी, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी। क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 या quicktrucklube.com. QTL, because we care.
3: जिंदगी दे सफर विच मुश्किल तां किते भी आ सकदी है, एक्सीडेंट या सट लगन कारण जिंदगी दी गड्डी खलो गई है, काम ते वी नहीं जा सकदे, सारे पासों समस्यावां ने घेर लिया है, तां दिल ना छड्डो, असी हां तुहाडे दुख वंडाउण लई। साडे एक्सपीरियंस्ड लॉयर रूपा बराड तुहानूं टाइम ते वध तों वध बेनिफिट्स दवा सकदे हन, इत्थों तक कि फीस भी क्लेम मिलन तों बाद। ज्यादा जानकारी लई कॉल करो रूपा बराड, कॉल 416-991-5939, 416-999-5939।
4: हेलो मम्मी।
5: हाँ हेलो
4: मम्मी, मैं गेम शो चो बोल रही हूँ, एक सवाल का जवाब दियो जरा।
5: हाँ हाँ पुत, पूछ की।
4: मम्मी मेरे डैडी का नाम किया,
5: एक कितने का सवाल है पुत?
4: मम्मी 1000 रुपए का।
5: पुत छड़ परा रहन दे, हुण 1000 पिछे आप घरे डांगा थोड़ी खानी है।
6: फिट्टे मु तेरे।
7: From the Dave Tatla News Desk, locally covered, nationally connected.

0: हाँ जी हरमन जी।
1: है हाले ताई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नहीं पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना किस बन।
0: मैं ता रंग दी गल करदा वी भाई चंगा साबण वरत्या करो।
1: हाँ।
0: माड़े साबण रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वालिया वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, ये कपड़ियां दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां पहला मैनू ये दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा जेड़ियां केड़ियां दा की मतलब है।
1: देखो उना ने
0: समझाओ ना पहला।
1: की समझावा
0: भाई? साडे पल्ले ता पाओ।
1: की
0: पाओ? केड़ियां नीतियां ने
1: उना ने जो क्या आया पहला वो गल ता सुन ला। तू
0: सुन लांगे पहला गल ता दसो नीति केड़ी है।
1: मेनू नहीं पता।
0: अच्छा
1: ठीक है।
0: हाँ जी।
1: उन्हां दी जिन्नियां भी नीतियां ने
0: जी
1: उन्हां दा प्रचार पता हुण कौन करूगा?
0: कौन करू?
1: सनी देओल।
0: सनी लियोन?
1: सनी लियोन नहीं, सनी देओल।
0: अच्छा।
1: अपना वो जड़ा नलके आला
0: धर्मेंद्र भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला।
1: हां ते
0: यार वैसे मेनू पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करावणी है।
1: क्यों?
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई।
1: अच्छा।
0: नलके पानी कढ़ देनी नाले नलके पटा लांगे नाले प्रचार करा लेंगे।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट ता फेसना हो पहला गाना सुनना ही नहीं तो मैं रो पैना जी।

0: कोई रीस।
1: असी हाँ कल्चर ऑफ पंजाब,
2: कल्चर ऑफ पंजाब
0: बेहतरीन पंजाबी एंटरटेनमेंट की मुंह बोल दी तस्वीर। एशियन कम्युनिटी का मनपसंद रेडियो शो कल्चर ऑफ पंजाब
1: तेजी नाल बज रहे रेडियो शो जिसका

0: For advertisements and information,
1: Sadi head office nu call karo 416-725-2551 416-725-2551.
2: Study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, या self-employed दी file, गल की, immigration दी हर problem दा solution लैन लई, community दे जाने पहचाने, अते तजर्बेकार immigration consultant, Gary Virk नु मिलो.
3: कोई case refuse हो गया या appeal ते चला गया, होवे immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो, इको ही ना, अते इको ही था, CIC immigration, हुणे ही call करो, 416-456-6161.
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: ऐसे ले मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस दे सम्राज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स ले सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट ले हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਚਲੋ AM 530 ਤੇ 24/7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ www.deshpardeshradio.com ਜਾਂ www.deshpardeshtv.com ਲਾਈਵ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ IPTV ਬਾਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਦੇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੇਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ 24/7

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें, और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।